आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और मैं यही कह रहा था कि रैली के पानी को लेकर नई प्लानिंग। जी हाँ, हाल ही के सूखे के बाद रैली प्रशासन ने पानी बचाने के नियमों में बड़े बदलाव की सोच रखी है। रैली वाटर ऑफिशियल्स ने बताया कि फॉल्स लेक में पानी का स्तर अब 79% तक वापस आ गया है, इसलिए पाबंदियों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। एक नए दैट इज 300 मिलियन के रिजर्वायर पानी के टैंक का प्लान भी जो है वो चर्चा में है। अगर ये होता है तो पानी की दिक्कत कम हो सकती है। मेरा तो यही कहना है कि दिक्कत रहे या ना रहे, ज़रूरत के हिसाब से ही पानी का यूज़ करना चाहिए। पानी की टेक केयर आपको ही करनी है ताकि आप ही को दिक्कत ना हो, है ना। इसलिए सोच समझ कर पानी का यूज़ जो है वो करना चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंजॉय किया आपने ये गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। तो मेरा कुछ सवाल है आपसे कि क्या आप रैली में रहते हैं? अगर हाँ तो हाल ही सूखे के बाद जो है पानी बचाने का नियम तो ढील कर दिया, लेकिन अलग नियम मैं कह रहा हूँ आपको। अगर आप रैली में रहते हैं तो अब नगर निगम आपके घर के बाहर खुले में पड़े सूखे पत्तों का ढेर नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। ढेर चाहे ढेर सारा हो या ढेर चाहे कम हो, उठाया नहीं जाएगा। अब पत्तों को साफ करने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। नए नियम क्या है इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन अब पत्तों का ढेर नगर निगम नहीं उठाएगा, ये चीज़ है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नायर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाण नाइट। तो नियम कुछ इस प्रकार है कि नियम नंबर एक, बीन में डालो। आप अपने सूखे पत्तों को हरियाली वाले कचरे के डिब्बे में, मतलब हरे रंग के यार्ड वेस्ट कार्ट में भरकर रख सकते हैं। रैली लीफ कलेक्शन FAQ जिसे कहा जाता है। अब ये कचरा हर हफ्ते उठाया जाएगा, डेली बेसिस पे नहीं उठाया जाएगा। बैग में भरो। अगर पत्ते डिब्बे से ज़्यादा है तो आपको उन्हें बायो डिग्रेबल पेपर बैग, मतलब कागज़ के सड़ने वाले थैलों में भरकर डिब्बे के बगल में फुटपाथ पर रखना होगा। आप एक बैग, मतलब एक बार ज़्यादा से ज़्यादा 15 बैग रख सकते हैं। ये बैग आपको खुद बाजार या हार्डवेयर स्टोर से खरीदने होंगे, है ना। और भी कुछ नियम है, बताता हूँ आगे, सुनते रहिएगा रेडियो।

और नियम नंबर 3 क्या है आपको बताऊंगा जरूर। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। वही छोड़ दो, लीव इट। प्रशासन का ये भी कहना है कि पत्तों को फेंकने के बजाय उन्हें मशीन से काट कर घास पर ही छोड़ दे या खाद बना ले जिससे मिट्टी को पोषण मिलेगा। ये भी एक नियम है। अब लोग गुस्सा है, अब लोग क्यों गुस्सा है ये बताना चाहूँगा। कुछ लोकल लोग इस नियम से काफ़ी चिढ़ गए हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करके कागज़ के बैग खरीदने पड़ रहे हैं और मेहनत जो है वो ज़्यादा लग रही है। पर अभी ऐसा है कि पर्यावरण को अच्छे से रखना है, साफ रखना है, सारी चीज़ें करनी है तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता है। फिलहाल ये नियमावली तो जारी कर रखी है, नया अपडेट तो कुछ है नहीं। जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है आई विल लेट यू नो सून। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।

रहे रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है बॉलीवुड की कुछ खबरें जान लेने का। तो पहली खबर यह है कि सलमान खान बनेंगे कर्ण। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर सलमान खान के फैंस के लिए है। वो बहुत जल्द महाभारत के महान योद्धा कर्ण के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस मेगा बजट फिल्म को मशहूर डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा बना रहे हैं और इसे फरहान अख्तर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। मेकर्स ने इस खबर पर पक्की मुहर लगा दी है, मतलब भाईजान का एक नया हिस्टोरिकल अवतार देखने मिलेगा उनके फैंस को। और भाईजान आजकल गणपति में इतने क्यूट नज़र आ रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। अभी तो भाईजान आरती कर रहे थे गणपति की, तो उनकी बहन ने उन्हें बताया कि आप सही तरह से रोटेट नहीं कर रहे हो, आप सही तरह से रोटेट कीजिए। तो भाईजान ने तुरंत करेक्शन किया और आरती को सही तरह से रोटेट किया। यही तो सादगी है आपकी, इसलिए फैंस का दिल भाईजान बार बार सोशल मीडिया पे जीतते हैं। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मदा नाइट्स एंड कैसे चल रही है आज की शाम की आपकी वाइब वाइब तो कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की चल रही है। जी हाँ, कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की वाइब। कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की अपकमिंग फिल्म वाइब को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दे दिया है। ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म में आपको भरपूर एक्शन और कॉमेडी का मिक्स डोज जो है वो देखने मिलेगा। कुणाल खेमू जो कि बहुत फिटनेस फ्रीक है और बहुत ही डाउन टू अर्थ, लाइक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनकी मैं देखते रहता हूँ अक्सर सोशल मीडिया पर। एंड कुणाल खेमू ने तरह तरह के रोल भी इस फिल्म में निभाए है। ही इज़ अ डायरेक्टर, ही इज़ एन एक्टर और कहानी भी कुणाल ने लिखी है, तो मजा आने वाला है ना। एंजॉय करते हैं अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नारा पर। पक्का देसी
1: प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

बचने दे। मतलब जैसे ही कुणाल खेमू का नाम सामने आता है तो मुझे याद आता है तन्नु ले के जाना अपने ना, ये गाना। ये गाने की वाइब हमारे टाइम पे तो इतनी थी कि ये गाना बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो पसंद किया जाता था। आज भी उसी चाव से ये गाना जो है वो सुना जाता है। एंड उसमें कुणाल खेमू की हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई थी, उनके आउटफिट्स, उनकी फिजिक। खैर, उनकी फिजिक तो आज भी कमाल की है, नो डाउट। तो कुणाल खेमू नया लेके आते हैं कुछ भी, लाइक यू नो, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। एक बहुत अलग टाइप का उनका जॉनर जो है वो रहता है, एंड इट्स लाइक मज़ा आएगा कुणाल खेमू की वाइब बड़े पर्दे पर देखने के लिए। और प्रीति जिंटा का साथ तो उनको है ही। तो एंजॉय करते हैं अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नर पर, पक्का देसी पक्का।

रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट्स, तो कुणाल खेमू की बात निकले और कलयुग मूवी की बात ना निकले, ऐसा हो सकता है क्या भला? मतलब म्यूजिक के बारे में तो ये मूवी काफ़ी अच्छी थी, तुझे देख देख सोना, ये जो गाना इट्स लाइक नथिंग इज लाइक दैट, एंड उसके बाद आदत को हम कैसे भूल सकते हैं, आतिफ असलम का वो आलाप कैसे भूल सकते हैं। तो आदत गाना आतिफ असलम का जो इंट्रोड्यूस हुआ था इसी मूवी में हुआ था, एंड वो टाइम में तो इतनी वाइब थी, आतिफ की आवाज़ बहुत फ्रेश आवाज़ थी, आतिफ को बहुत लोग उसी गाने से आई गेस जानना शुरू किए थे, लेकिन मैं आतिफ असलम को पहले से ही लाइक यू नो उनके गाने सुनना मुझे बहुत पसंद लगता था, जब उनका बैंड था तब से मैं उनके गाने जो है वो सुनते आ रहा हूँ, एंड आदत गाने के बाद तो कमाल का ही एक करिश्मा हो गया था ऐसा मुझे लगता है। एंजॉय करते हैं अगला गाना।

कुणाल खेमू के साथ प्रीति जिंटा का नाम अगर लिया है तो मैं क्या ही कहूँ। प्रीति जिंटा की तारीफ करूँ तो बेमिसाल खूबसूरत। प्रीति जिंटा को पहली बार मैंने टीवी पर देखा था एंड सोल्जर फिल्म का गाना था टाइटल सॉन्ग। प्रीति जिंटा की खूबसूरती आज भी उतनी ही बरकरार है एंड उनके डिंपल के बारे में तो क्या कहना। बहुत सारे लोग तो प्रीति जिंटा के फैन हैं अचानक से, लाइक प्रीति जिंटा की बहुत मूवीज आई थी उस टाइम एंड देन प्रीति जिंटा की कोई मूवी नहीं आई, लेकिन आज भी खूबसूरती की बात अगर निकलती है तो प्रीति जिंटा का नाम हमेशा ऊपर रहता है। एंड मैं तो उनके डिंपल का, उनके एक्टिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड जिस तरह से डाउन टू अर्थ, जिस तरह से उनका नेचर है फ्रेंडली, वो शायद बहुत ही कम लोगों में देखने मिलता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। पक्का देसी तो है, पक्का लोकल भी है। एंजॉय द नेक्स्ट ट्रैक।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड रणबीर जो है वो उनकी फिल्म में काफ़ी बिजी है। रामायण का उनका जो मूवी आने वाला है फर्स्ट पार्ट, ये काफ़ी बिजी रहने वाला है एंड उसमें काफ़ी शानदार तरह के VFX जो है वो भी हमें देखने मिलेंगे। कुछ चीज़ें मतलब ऐसा हुआ कि सीता जो नज़र आ रही है साई पल्लवी, तो सीता के पीछे उनकी बहन का एक किरदार एक एक्ट्रेस निभा रही है। उनका चेहरा इतना हाईलाइट हो चुका था कि लोग उनकी इस खूबसूरती की तारीफ़ करने लगे। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि सीता का किरदार जो है वो साई पल्लवी ने तो निभाना ही नहीं चाहिए, उनके पीछे उनकी जो बहन का किरदार निभा रही एक्ट्रेस है उन्होंने निभाना चाहिए। उसके बाद ऐसा हो रहा है कि उनका चेहरा जो है ब्लर कर दिया गया है, साई पल्लवी का चेहरा थोड़ा लाइमलाइट में लेके आ रहे हैं। तो क्या वाकई में जनता खुश रहेंगी इससे? क्या आपको भी लगता है कि जो सीता मैया का किरदार है वो किसी और ने निभाना चाहिए था? लाइक आई डोंट नो, लाइक आपकी राय क्या है?
1: या

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड थिंग इज दैट की बहुत सारे फैंस में बहस छिड़ चुकी है सोशल मीडिया पर। मैं देखते रहता हूँ अक्सर कि सीता मैया का किरदार जो है वो किसी और एक्ट्रेस ने निभाना चाहिए था, क्योंकि साई पल्लवी को बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं कि वो नहीं सूट करेगी सीता मैया का किरदार, उन्हें नहीं जच रहा है, ये गलत कास्टिंग हो गई है। तो ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड अगेन 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट्स इसी शो पर। 7 से 10 मेरा ये शो चलता है एंड डेफिनेटली आप एंजॉय कीजिएगा। बापा विराजमान हो चुके हैं, बहुत अच्छी वाइब है वातावरण में, भक्तिमय वातावरण जो है वो हो चुका है। एंड यस, ऐसी पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रखिएगा। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना एंड मिलता है कल, तब तक के लिए गुड नाइट।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

हर बाल की खाल की ये छाल भी खा जाए, इसके हाथ पड़ जाए तो महीने साल भी खा जाए, किसी बेहाल का बचा जो हाल भी हाल खा जाए, बेमौत मरते मन का ये मलाल खा जाए, लालू का लाल खा जाए, नक्सलबारी की नाल खा जाए, बचपन का धमाल खा जाए, बुढ़ापे की शाल खा जाए, हया तो छोड़ो बहया की चाल भी खा जाए, और अगर परोसा जा सके तो ख्याल भी खा जाए।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

जाना कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी।

वो गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM। पक्का

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: था कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी, तुझे नहीं पता क्या?

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: प्योर वीगन कैफे टर्न्स 5 5 इयर्स ऑफ ग्रेट फूड अमेजिंग पीपल एंड 100% वीगन गुडनेस एंड वी कुडंट हैव डन इट विदाउट यू। टू सेलिब्रेट वी आर मेकिंग सितंबर एक्स्ट्रा स्पेशल 5 इयर्स 5 वीक्स 5 न्यू स्पेशल्स 5 विनर्स and every order gets you entered to win a $25 Pure Vegan Cafe gift card end of each week. A new creation unlocks every week with weekly giveaways and a chance for you to decide which special earns a permanent spot on our menu. The celebration starts September 1st. Thank you for an incredible 5 years.
2: Shopping
1: now,
2: for your
1: let's have
2: car?
1: Some fun.
2: LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com. It's easier here.
3: Movie dekhi thi, pav bhaji khai thi, panchi gaye the.
4: Wrong! 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है। अरे भूली गया, आ डेट तो याद रखवानी छोए। गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट। चनिया चोड़ी अने केडियू रेडी राखो। एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल। जॉइन अस फ्राइडे अक्टूबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स। Dance to the incredible beats of Amruta Manke and Nimesh Nagar with live music, delicious food, family, friends, and Raat Bhar Garbani Moj. Early bird tickets only until September 7th.
5: Tickets on Sulekha or Check the Rhythm and Ras Flyer on Radio Naira's Facebook, Instagram, or RadioNaira.com. One beat, one circle, one community.
0: Nara 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM Pakka Desi Pakka Local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

ऐसी युवती नहीं सर पे चढ़ी है जैसे कोक में बातें बातें करती है तुम ABCD उसकी होती F से शुरू और U पे खत्म।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But speaking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. Aur obviously masti to continue chalte rahe वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SG4 पर 90 AM एंड 99.9 FM SG3 पहले जो नायरा फेम है। हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर, ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यू। Artists, audiences, and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week to many stage production, engaging program, and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोकल।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूंस एंड टॉक, वो खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए. पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक. चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान. 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान. बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट. 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519. अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454. फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डूनसन टॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का।

इस ऑसम ब्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून सेंट ऑफ वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी US नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as jet truck, parachute, jump team and aerobatic pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larking are already slated to return. The show is free and open to the public throughout the base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, Paka Desi, Paka Local.

0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 41090 AM पक्का
1: देसी अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM 99.9 FM SD 41090 AM एंड 99.9 FM SD 34 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक वेल मॉरिस विले रेडी हो जाओ आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है इंट्रोड्यूसिंग रचा बांडा फूड ट्रैक ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे क्रिस्पी डोसा चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए ये सिर्फ फूड नहीं ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस दोस्तों के साथ चिल करो फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम Now arriving in Morris Village coming soon. Racha Banda, jahan taste bhi mast aur vibe bhi best hai. Lal kahi jaiyega nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka desi, pakka local.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 4090 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टू सेंटर।
1: वेल आवर ट्रायंगल में बहुत जल्दी स्पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास स्पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of speech is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for the this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gari, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, Pakka Desi, Pakka Local.

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 449 एएम 99.9 एफएम एचडी 34 तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक कहा धारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

इज द मार्केट आर गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM LG4 1490 AM 99.9 FM LG3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक। ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450 डॉट विक्स ओरो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है। डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्स ओरो स्पीडवे। एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव। See the roar of engine and pure excitement of high-stakes racing. Point racing is back at Northwick Boro. It's summertime time and spectacles at one of the NASCAR's most historic tracks. Don't miss epic tailgate and high-stakes racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Niagara, pakka deshi, pakka local.

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर नाइनटी एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु. नायरा सेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक्स. वेल, हमारे ट्रायंगल में 38th नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है. कम एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल इवेंट ऑन द क्रिस्टल कोस्ट, द एनसीडीयू बिलफिश टूर्नाम

0: ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 40 90 AM, 99.9 FM HD3 तेलुगु नायरा फेम है हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक।
1: विल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लाई एट द ग्रासी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन विद मोर देन 60 वेंडर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। This family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to lavender jewels to unique specimens. Hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira. आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

रश्मिका मंदना इज रेडी टू शाइन अगेन. This is Bollywood Blaze with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Rashmika Mandana attended the launch of MS Legacy, a legacy on screen, the upcoming biopic of legendary Carnatic vocalist MS Subbulakshmi at the Music Academy in Chennai. The film was launched on Subbulakshmi's 110th birth anniversary, with Kamal Hassan giving the ceremonial first clap. Directed by Gautam Tinnanuri, the film stars Rashmika as MS Subbulakshmi with music by Anirudh Ravichander. It is so... I like how cinema does a really cool job making all the बायोपिक्स उन लोगों के बारे में हमें जानने को मिलता है जो शायद हम जिन्हें शायद हम अच्छे से जान नहीं पाते, जो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज हैं. वेल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फिल्मी स्टोरीज लाइक दिस. आई विल बी बैक ओनली ऑन नायरा.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

OMG, you know, अरिजीत सिंह ने 200 टेक्स दिए थे एक गाने के लिए. कैन यू इमेजिन, वो तो एक टेक में बहुत बेहतरीन गाना निकाल देते हैं, बट ही हैड टुक 200 टेक्स. विद सॉन्ग, लेट मी टेल यू, दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. यू नो, जय जय राम फ्रॉम रामायण हैज अराइव्ड विद अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल लेंडिंग देयर वॉइसेस टू द डिवोशनल ट्रैक कंपोज्ड बाय एआर रहमान एंड पेंड बाय डॉक्टर कुमार विश्वास. अरिजीत रिपोर्टेडली रिकॉर्डेड नियरली 200 टेक्स कंप्लीटली इमर्सिंग हिमसेल्फ इन द डिवोशन एंड इमोशन ऑफ द सॉन्ग. द ट्रैक ऑफर्स अ ग्लिम्स ऑफ रणवीर कपूर एज लॉर्ड राम एंड साई पल्लवी एज गॉडेस सीता. रामायण स्टारिंग रणबीर एंड यश इन द लीड रोल्स इज सेट टू रिलीज इन टू पार्ट्स ड्यूरिंग दिवाली 2026 एंड 27. जब इस गाने में अरिजीत की आवाज आती है, द सॉन्ग फील सो गुड मैन. आपने अगर नहीं सुना है तो सुनकर जरूर देखना, मजा आता है. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ओनली ऑन नायरा.

अंदाज अपना अपना इज सच एन आइकॉनिक फिल्म. उसके गाने, उसके स्टार, उनके उनकी एक्टिंग, स्टोरी, एवरीथिंग इज सो आइकॉनिक, है ना. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी 99. फॉर इयर्स रूमर्स हैव सजेस्टेड दैट रवीना टंडन एंड करिश्मा कपूर डिड नॉट गेट अलॉन्ग ऑन द सेट्स. विद फराह खान कमेंट्स ऑन कॉफी विद करण एडिंग टू द स्पेकुलेशन. द टू रिसेंटली रियूनाइटेड ऑन सोनीज इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5, वेयर करिश्मा इज अ जज एंड रवीना अपीयर्ड एज अ स्पेशल गेस्ट. ड्यूरिंग देयर रियूनियन दे रिविजिटेड मेमोरीज ऑफ शूटिंग द 1994 कॉमेडी अंदाज अपना अपना एंड रिवील व्हाट हेल्प्ड देम ब्रेक द आइस. रिकॉलिंग द शूट, रवीना सेड शी, आमिर खान, सलमान एंड करिश्मा डिड नॉट स्पीक मच despite working together. However, their shared love for acting helped them put their differences aside. She remembered one night shoot when she and Karishma were left tied to a pillar while everyone else went for dinner as part of a prank. And she said, it was the dinner break and we were still tied up. Everyone had planned to prank us. Everyone left for dinner and we were tied up and alone. While waiting to be united, Raveena finally asked, juice piyegi? Karishma replied, yeah, I want, I'm very hungry. Raveena said that simple exchange has how the two finally started talking and broke their eyes. मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है यार, अगर आपकी किसी के साथ झगड़ा वगड़ा चल रहा है, आप ना अपने आप को उस बंदे के साथ रूम में बंद कर लो. उसके बाद में यू डोंट हैव द चॉइस ओनली कि आपको बात करना ही पड़ेगा और फिर अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. सो इट्स अ ग्रेट जुगाड़ टू गेट टू ब्रेक द आइस. वेल, स्टेडियम फॉर मोर ओनली ऑन नाउ.

हैव यू एवर डन इंटर्नशिप इन योर लाइफ? यू नो, माई मेरे करियर की शुरुआत एक इंटर्न वाले जॉब से ही हुई थी. आई थिंक सब शुरुआत ऐसे ही करते हैं. एंड दोज वर रियली फन डेज, आई कैन टेल यू. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Amitabh Bachchan and Deepika Padukone are set to star in the Hindi remake of Robert De Niro and Anne Hathaway's 2015 film, The Intern. Directed by Amit Sharma, after years of delays, the remake is finally set to go on floors. The film was initially announced with Rishi Kapoor, with Amitabh Bachchan later coming on board to the role. Sharma also confirmed that his adaptation will take the story in a different direction rather than being an exact replica of the original. That's what we want. Matlab, humne to इंटर्न देखी ही है ऑलरेडी, बट वी वुड रियली लाइक कि उसमें क्या नया टच आ रहा है ना. चलो फिलहाल सुनवाने वाली खूबसूरत गाने.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

0: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मेरा नाम है नायाब मिढा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा। एंड गेस व्हाट, आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी, माय पोएट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd। कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस। टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी, सी यू देयर। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ, कहानियों के साथ, किस्सों के साथ।
1: Shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place, so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles, backed by our trusted network of local dealerships. With expert service, convenient locations, and flexible buying options, LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com. It's easier here.

0: हे गाइस, वेलकम बैक. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति, और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 एंड 101.9 एफएम 1490 एएम. गेस व्हाट, थोड़ा सा इंटरप्शन है बिकॉज वी हैव अ गेस्ट इन आवर स्टूडियो एंड आप लोग मेरे साथ उनको एक बार मिल चुके हैं. लास्ट फ्राइडे वी स्पोक अ लिटिल बिट ऑन दैट एंड नाउ वी आर बैक. And we're going to talk about the raffle. We're going to talk about the event that is taking place tomorrow at HSNC Cultural Hall. And welcome, Bindu, for
1: Thank
0: that.
1: Thank you, Jyoti. Thank you once again to Radio Naira for inviting me over again and talk about this amazing event.
0: Of course. So, Bindu, ek baar phir se hamare audience, hamare listeners ko aap yaad dila dijiye, what is the event all about, and if they have not bought the tickets, how they can buy the tickets for that, and what are the timings?
1: Yes, wonderful. So, the first thing I'm going to say is that stage is set. It's all tomorrow.
0: Awesome.
1: It's called Moriya Re Deva Shri Ganesha. It's a beautiful, it's a program presented at the HSNC Cultural Hall, 19th September, 8 p.m. We are doing this with Shidori Productions. Shidori, I'm Bindu Singh from Shidori Productions. We have brought to you many, many shows before, like Kal Aaj Aur Kal, Raaste, Zindagi Ek Suhana Safar, Awara Hoon, and many, many more. And again, we are here to present and celebrate Lord Ganesha in a completely different way, in a most divine way, including music, singing, live plays, which are like street plays, and dancing. So it's like I would compare it to a Broadway production because it's
0: A
1: continuous program. We don't have any interruptions in the program, and you will all love it. So
0: most definitely, I'm sure. And guys, if you guys are listening, you're going to miss out on a lot if you guys do not attend that tomorrow. And once again, where can they get the tickets from?
1: So you can get the tickets from the HSNC website also. We have a flyer going around with the QR code. And the best thing, Jyoti, is I'm here to also give away 5 tickets today.
0: Oh, wow. Guys, yeah. 5 tickets.
1: Viewers, please call in and get your tickets. We will be happy to give you the $35 ticket, 5 of them free. So please call in. And we are looking forward to seeing one and all. Like I said, it's an amazing theatrical performance, which has dance, music, storytelling in a very, very unique way. And it's a celebration of Lord Ganesha like never before. You will be able to see stories of Ganesha from different parts of India and how Ganesha is celebrated.
0: Oh, wow. That sounds really amazing. And guys, do not forget that it is tomorrow. And what time it starts?
1: It starts at 8 p.m.
0: 8 p.m., thought so.
1: We are very excited and we have worked very, very hard. And the most amazing thing is from the community, we have about 100 participants that are going to be part of this show. 100.
0: So you guys can imagine the, you know, scale of this particular show.
1: Yes.
0: You guys need to experience. And I remember, Binduji, you used the word that it's going to be a divine experience. So guys, do not miss on this fun and give us a call at 919-999-8595 if you guys are interested. You never know, if Binduji likes your voice, we might be able to throw in those raffle tickets for you. And remember, they are 5, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Absolutely. And ये जो शो है, ये गणपति बप्पा को इतने बहुत प्यारे ढंग से सेलिब्रेट करता है और सबके मन को छुएगा. सबसे बड़ी बात ये है. और इसमें हमारे आर्टिस्ट ने बहुत बहुत मेहनत करी है और हम हिंदू सोसाइटी के लिए ये फंड रेजिंग कर रहे हैं उनके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए. सो वो भी एक बहुत अच्छा कॉज है.
0: श्योर.
1: सो एवरीथिंग टू पुट टुगेदर, आई थिंक यू विल ऑल लव इट.
0: गाइस, लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने पार्टिसिपेट किया, बहुत मेहनत करी है. सो मेहनत तब रंग लाती है जब somebody can just प्यार से बोल दे अमेजिंग, आपने बहुत अच्छा काम किया है. पीपल डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग एल्स. सो गाइज, बी देयर 8 o'clock एंड कॉल अस इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड. वील बी हैप्पी टू गिव अवे द टिकट्स. एंड एक चीज आपसे पूछनी थी. सो वहाँ पे पार्किंग की तो कोई फी नहीं होगी?
1: जी नहीं.
0: ओके, पार्किंग वुड बी फ्री. सो देयर इज समथिंग दैट इज फ्री. वी हैव फ्री टिकट्स एंड वी हैव फ्री पार्किंग.
1: टिकट्स हैं, फ्री पार्किंग है, और आप आइए तो आपको एक फ्री एंटरटेनमेंट भी है. जी हाँ, गणेशा पे है प्रोग्राम, लेकिन एंटरटेनमेंट से भरपूर है ये, क्योंकि इसमें हम बॉलीवुड स्टाइल से भी प्रेजेंट कर रहे हैं, हम फोक स्टाइल से भी प्रेजेंट कर रहे हैं. एक इस तरह का स्टोरी टेलिंग है जिसमें आप स्ट्रीट प्लेस का फ्लेवर देखेंगे, तो हर तरह से, और लाइव सिंगिंग भी है. हमारे गायक बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी आवाजें हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि एक भरपूर प्रेजेंटेशन है. इट्स अ वेरी होलसम प्रेजेंटेशन एंड इट्स अ वेरी डिवाइन प्रेजेंटेशन. लाइक आई ऑलवेज यूज दैट वर्ड बिकॉज इट फुलफिल्स योर हार्ट.
0: ऑफ कोर्स. सो आपने कोई रोल नहीं लिया?
1: किसी को बैक भी मैनेज करना होता है. हमारी काफी बड़ी टीम है.
0: आई एम श्योर
1: हमारे जो डायरेक्टर हैं शिडोरी प्रोडक्शंस के, रवि देवराजन प्रोड्यूसर भी हैं, सुधा ओम ढींगरा हमारी नाटक की डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं शो की, भरत त्रिवेदी हमारे म्यूजिक के डायरेक्टर हैं और सिंगर्स और सब कुछ मैनेज करते हैं, और मैं कहना चाहिए मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स कह सकते हैं, हर जगह पे पहुंच जाती हूँ. लेकिन बहुत खुशी से, और हम लोग एक अच्छी टीम है, और हमारा जो, और इस टीम के साथ हम ही 5 नहीं, हमारे और भी बहुत सारे हमारी टीम के मेंबर्स हैं जो बड़ी डिवोटेडली शिडोरी के लिए काम करते हैं.
0: Of course.
1: जिनको मालूम नहीं है, मैं शिडोरी का मतलब समझाना चाहूंगी. आपने देखा होगा पुराने जमाने में, या मेरा जूता है जापानी,
0: yes.
1: जो गाना है उसमें वो डंडा और
0: yes.
1: एक पोटली बंधी होती है, शिडोरी उसको कहते हैं. और हमारे नजरों में शिडोरी मीन्स अ बंडल फुल ऑफ टैलेंट. एंड द आई वुड से आवर मोटो ऑफ शिडोरी इज टू गिव local talent a platform to showcase their talent. So we believe that we have so much talent locally that we should showcase it, and we are very proud to present that in our shows.
0: Nice, beautiful. No, that is a really, really good motivation for people who have really great talent. बहुत मुश्किल से एक तो मिलते हैं talents, you know, and that वो कहते हैं ना, जो आपके बार पे खरे उतरे.
1: हाँ, बिल्कुल.
0: सो वंस यू गेट इट एंड यू डोंट वांट टू लूज देम. सो दैट इज अ नाइस वे ऑफ प्रेजेंटिंग द टैलेंट. एंड गाइस, देयर कैन बी नथिंग बेटर देन जस्ट डूइंग अ शो ऑन गणेश जी. सो डू नॉट फॉरगेट दैट.
1: जी हाँ, और वी आर वेरी प्राउड टू प्रेजेंट दिस. एंड अगेन, प्लीज कॉल इन फॉर योर फ्री टिकट्स. आई एम गिविंग अवे 5 टिकट्स टुडे, $35 ईच. So please call in. The show is tomorrow, 19 September, 8 p.m. at the HSNC Cultural Hall.
0: Yeah, guys, do not forget. And we are here. Give us a call, 919-999-8595. Interested? Free tickets? Le lo yaar, kabhi to kuch free le lo. Just call us, okay?
1: Aur aap disappoint nahi honge. Sabse badi baat ye hai.
0: So entertainment guaranteed.
1: Absolutely.
0: Perfect. I'm sure everyone will have that same feeling. Chaliye, that's a great thing. Hey guys, do not forget, it's tomorrow at 8 o'clock. And do call us if you have not bought the tickets. This is your chance. You can get a free ticket, free parking. Everything is free. Entertainment is free. Just call us.
1: Yes.
0: All right. Let's take a little bit break from this and we are going to continue listening to the songs, and coming up right away, Sare Sher Khul Gaye.

0: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: हे गाइस, वेलकम बैक एंड वी आर बैक लिसनिंग टू रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 एंड 101

0: Discover wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to Healthy Rehne Ke Liye Musical Parampara on Radio Naira.
1: So let's follow that parampara and keep listening to Radio Naira 99.9 FM HD4 and 101.9 FM 1490 AM. और हम बात कर रहे हैं इन जनरल कि कैसा चल रहा है आजकल लाइफ. अगर किसी को फिलॉसफी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे कॉल करना, मेरे को बड़ा मज़ा आएगा आपसे बात करने में. सो दैट्स एग्जैक्टली बेसिकली वी आर टॉकिंग टुडे. सो नेक्स्ट आई वांटेड टू आस्क यू गाइस, डू यू गाइस थिंक दैट वी हैव बिकम लेस पेशेंट? हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं, गॉड फॉरबिड, पेशेंस कम हो गई हमारे में. वी हार्डली वेट फॉर एनीथिंग एनी मोर. लाइक हर चीज़ हमें इंस्टेंट चाहिए. आई स्टिल रिमेंबर द डायलॉग ऑफ ऋषि कपूर इन चांदनी. द फर्स्ट टाइम ही एवर लुक्स एट चांदनी एंड उसका जो डांस होता है, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ, वो डायलॉग उस टाइम पे था. लाइक यू नो एवरी थिंग इज़ वेरी इंस्टेंट लव, इंस्टेंट कॉफ़ी, ब्ला ब्ला ब्ला. बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंस्टेंट अभी हो रहा है. दैट वी कैनॉट वेट फॉर थिंग्स, वी गेट रियली इम्पेशेंट. मूवी स्ट्रीम्स इंस्टेंट चाहिए, फूड अराइव्स रियली फास्ट. और उसमें वो भी डील है फूड में कि डोमिनोज का, मैंने इंडिया में सुना है, डू नॉट नो हियर, इतना डिलीवरी नहीं करवाया, लेकिन इट सीम्स लाइक यहाँ पे भी होगा. बट इफ़ इट डज नॉट कम इन 30 मिनट्स, इट इज़ फ्री, समथिंग लाइक दैट, और 15 मिनट्स. एंड यू नो वेन एवर वी गेट स्लो रिप्लाइज, इट मेक्स अस वंडर व्हाट्स रॉन्ग. लाइक किसी फ्रेंड को एक मैसेज करा और उसका आधे घंटे सुबह से शाम तक, अगले दिन तक कोई मैसेज नहीं आया, तो एक इनसिक्योरिटी होती है. दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस, एक इनसिक्योरिटी होती है, एक इम्पेशेंट होता है. या तो वी विल कॉल और कॉल का फोन नहीं उठाया तो ओ माई गॉड वो मेरे से गुस्से में तो नहीं. एक खुद टू थिंग्स, वी फील सो इनसिक्योर एंड वी ऑल्सो लूज कॉन्फिडेंस ऑन आर ओन सेल्फ कि अब क्या, बिकॉज इट इज़ ऑल कनेक्टेड. सो अर्लियर वी आर टॉकिंग अबाउट डू यू गाइज थिंक दैट वी आर लोनली हियर. सो वो एक डर लगता है कि अच्छा अभी इस दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं फिर से अकेले हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, क्या होगा. बिकॉज इट्स नॉट इंडिया दैट वी हैव आर रिलेटिव्स और यू नो पेरेंट्स ऑलवेज लिविंग विद अस. इंडिया इज़ डिफरेंट, राइट? वो कहते हैं ना, एक फरलांग में तो मासी रहती है, दूसरे फरलांग में. Those who know what I'm talking about, you would know that it is not a distant relative we are talking about, like close relatives who are living very close in India. So it is kind of helpful. Bacche apne aap pal jaate hain wahan pe. So it's kind of different. But yahan pe we just get a little bit impatient. So I'm not sure if technology has helped us to value the time or made us less patient with all these instant things available for us. What do you guys think? People were less patient at that time, like 20 years ago, parents वगैरह, या वो life better थी? What everyday situation tests your patience the most? What do you guys think? Which is the most impatient thing of your life? Like, I cannot just stand this, I need this immediately, or something like that. Give me a call, let's talk, and I'll be happy to have that discussion. I just love talking, you can tell, right? All right, keep listening. 919-999-8595 if you want to talk, and we can obviously chit chat about this also. And for the event for tomorrow, the Ganesha event, you can also win some prizes or the tickets, or you know, at least have a chit chat. Anyway, I'll wait for your calls. Until then, let's listen to the Nacha, Nacha, Nacha, Nacha.

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स और मैं हूं सबके दिलों का चिराग. मेरा नाम है आरजे पराग. 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश. कैसे चल रही है आज की आपकी इवनिंग? और जैसे मैं डे फर्स्ट से बोल रहा हूं कि हर तरफ हर दिशा में एक ही नारा गूंज रहा है और वो है गणपति बापा मोरया. और काफ़ी अच्छे से सारी कॉम्पिटिशन्स, फेस्टिवल झांकियां जो लगी है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है. और मन मानो इतना बहुत ही अच्छा लग रहा है. एक वाइब है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है वो चल रहा है. एंड नथिंग इज़ लाइक दैट. सुख करने वाले, दुख हरने वाले बापा सबके साथ है तो क्या दिक्कत है. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 91.9 नाइट्स.

वेल एंजॉय किया आपने, एक गाना गाना था वाकई में काफ़ी ब्यूटीफुल और जिसने सेट कर रखी है इस इवनिंग की वाइब। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स और मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। खबर है पहली जो आ रही है वो है कि रैली से खबर आ रही है, जहां कैपिटल बुलेवार्ड के पास सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एस्टन स्क्वायर शॉपिंग प्लाजा में एक पिकअप ट्रक सीधे एक लोकल चर्च की इमारत में जा घुसा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी को भी गंभीर रूप से कोई चोट नहीं आई और प्रशासन का नुकसान जो है वो भरपाई जो है वो प्रशासन लेने वाली है वेरी सून। तो मैं यही कह रहा था कि यार आजकल ना ये घटनाएं जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो सावधान रहने की हर एक को ज़रूरत है। कब क्या हो जाए इसकी तो कुछ भी गारंटी नहीं ऐसा लग रहा है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

हेलो हाय, कैसे का है? आप सुन रहे हैं रेडियो नारावण निर्वाणा नाइट, हम बात कर रहे हैं लोकल खबरों के बारे में। मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। अगली खबर है कि धरम को आज उनकी नई पुलिस चीफ मिल गई है। चीफ स्टेफनी मार्डीज ने आज सुबह धरम परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर में अपने पद की औपचारिक शपथ ली है और उन्होंने कहा कि शहर में हिंसा कम करना और लोगों का भरोसा जीतना उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अब गाड़ियों की अंदर शीशे तोड़कर चोरी की गई, आज जो है व्हीकल चर्च के अंदर घुस गया, ऐसी तरह तरह की घटनाएं जो हम सोच भी नहीं सकते वैसी हो रही है। इन पे रोक लगाने की ज़रूरत है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करते हैं ये अगला गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आपने एंजॉय किया ये गाना, गाना था वाकई में काफी ब्यूटीफुल। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड इसी के साथ रैली सिटी काउंसिल ने युवाओं की सुरक्षा के लिए प्रास्ताविक टीन कर्फ्यू, मतलब जो रात का कर्फ्यू होने वाला था, उसके फैसले में अब पूरी तरह से जो है निर्णय दिया है। फैसला ये है कि फैसले को वापस लिया गया है। पुलिस और जनता से बातचीत के बाद ये माना गया कि कर्फ्यू की जगह दूसरे तरीकों से युवाओं को सही रास्ता दिखाया जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे युवाओं को सही रास्ता दिया जाएगा। कर्फ्यू लगाना इज़ नॉट द राइट वे, ऐसा सबका मानना है। तो कर्फ्यू जो लगने वाला था वो अब लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस लेना काफी जरूरी है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

एंजॉय किया आपने गाना जिसे सेट कर रखी है इस शाम की ब्यूटीफुल वाइफ। हेलो हाय कसक काय, आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाता नाइट्स एंड टेक्निकल की दुनिया से खबर है कि ड्यूक यूनिवर्सिटी में आज साइबर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इसमें देश भर के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था इस बात पर चर्चा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जिसके वजह से कुछ भी काम अभी हो नहीं रहे, मतलब सलोन में जाने से पहले भी लोग अपनी पिक्चर ChatGPT पे अपलोड कर रहे हैं एंड उसके बाद ChatGPT को बोल रहे हैं कि मुझे एक अच्छा सा ग्रूमिंग वाला लुक दो। उसके बाद जो लुक आ रहा है ना भाई, इतना अच्छा लुक आ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आ रहा है। वो लुक बार्बर को दिखा रहे हैं और वैसा ही लुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वैसा लुक नहीं आता, ये बात अलग है। तो जी हाँ, AI इंसानी सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके लिए ये सम्मेलन हुआ था। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पंडित बनाना।

0: barrel.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिख गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए